0: जाएं। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, जा कारण मैं ढूंढता सन्मुख मिलिया आई, जिसे खोजने के लिए मैं दर दर भटका, जिसके लिए मैंने जब तब और न जाने क्या क्या जतन किए, वो अचानक मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वह परमात्मा, वह सत्य जिसे मैं दूर समझता था, वह तो मेरे अत्यंत निकट निकला। लेकिन मिलन के उस पल में कबीर को एक संकोच घेर लेता है। तन मैली पीव उजला, वे कहते हैं कि मेरा यह तन, मेरा यह मन विकारों और अहंकार की धूल से मैला है, जबकि मेरा पीव यानी मेरा प्रियतम परमात्मा साक्षात प्रकाश हैं, अत्यंत उज्ज्वल और पवित्र हैं। लागी न सको पाई, यानी इस गंदगी के साथ, इस मैल के साथ मैं उसके पावन चरणों को छूने की हिम्मत कैसे करूं? यह दोहा हमें सिखाता है कि परमात्मा तो हमारे सामने हमेशा खड़ा है, बस हमारे भीतर की अशुद्धियां और हमारा संकोच ही हमें उससे गले मिलने से रोकता है। कबीर साहब यहाँ हमें समझा रहे हैं कि अध्यात्म में पात्रता बहुत जरूरी है। परमात्मा तो हाजिर हैं, पर क्या हमारा हृदय इतना साफ है कि हम उस अनंत प्रकाश को छू सकें? आज का चिंतन, दोस्तों, आज विचार कीजिए कि क्या हम भी परमात्मा को सिर्फ बाहर की मूर्तियों और तीर्थों में ढूंढ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे ठीक सामने खड़ा है और हमारी बुराइयां, हमारा क्रोध या हमारा लोभ हमें उसे पहचानने नहीं दे रहा है? आज कोशिश कीजिए अपने मन के आईने को थोड़ा साफ करने की। याद रखिए, जब मन की मैल धुलेगी तभी आप उस उज्ज्वल प्रियतम के चरणों में स्थान पा सकेंगे। ईश्वर दूर नहीं है, बस हमारी तैयारी अधूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ 90.8 FM रेडियो मन भावन। तब तक के लिए राम राम।
1: अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग, आपले खंदेश आपली मानसं।

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आपला खानदेश, आपली मानसर.
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से.

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, जा कारण मैं ढूंढता सन्मुख मिलिया आई, जिसे खोजने के लिए मैं दर दर भटका, जिसके लिए मैंने जप तप और न जाने क्या क्या जतन किए, वो अचानक मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वह परमात्मा, वह सत्य जिसे मैं दूर समझता था, वह तो मेरे अत्यंत निकट निकला। लेकिन मिलन के उस पल में कबीर को एक संकोच घेर लेता है। तन मैली पीव उजला, वे कहते हैं कि मेरा यह तन, मेरा यह मन विकारों और अहंकार की धूल से मैला है, जबकि मेरा पीव यानी मेरा प्रियतम परमात्मा साक्षात प्रकाश हैं, अत्यंत उज्ज्वल और पवित्र हैं। लागी न सको पाई, यानी इस गंदगी के साथ, इस मैल के साथ मैं उसके पावन चरणों को छूने की हिम्मत कैसे करूं? यह दोहा हमें सिखाता है कि परमात्मा तो हमारे सामने हमेशा खड़ा है, बस हमारे भीतर की अशुद्धियां और हमारा संकोच ही हमें उससे गले मिलने से रोकता है। कबीर साहब यहाँ हमें समझा रहे हैं कि अध्यात्म में पात्रता बहुत जरूरी है। परमात्मा तो हाजिर हैं, पर क्या हमारा हृदय इतना साफ है कि हम उस अनंत प्रकाश को छू सकें? आज का चिंतन दोस्तों, आज विचार कीजिए कि क्या हम भी परमात्मा को सिर्फ बाहर की मूर्तियों और तीर्थों में ढूंढ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे ठीक सामने खड़ा है और हमारी बुराइयां, हमारा क्रोध या हमारा लोभ हमें उसे पहचानने नहीं दे रहा है? आज कोशिश कीजिए अपने मन के आईने को थोड़ा साफ करने की। याद रखिए, जब मन की मैल धुलेगी तभी आप उस उज्जवल प्रियतम के चरणों में स्थान पा सकेंगे। ईश्वर दूर नहीं है, बस हमारी तैयारी अधूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ 90.8 FM रेडियो मन भावन। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching.

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: भेजा सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: ऐसी मुसीबत कैसे हो छोटे
1: भाई? ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया?
1: झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म शेखर, मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
1: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: अच्छे हम अकेले
1: गरीब साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: क्या पतंगे चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।